0: पर्दे के पीछे से देखने के बाद भी डर रहा था कि कहीं नजर न लग जाए।
1: खुशहाल रहो बरखुरदार के खुद ही शिकार किया और अभी भी बेखबर हो।
2: बहुत खूब के यजीद के चंगुल से बची और फौज के कमांडर को फंसा लिया। मेरी बहन मेरी तरफ देखो।
3: जालिम के सामने जरूर आता है। एक बात जान लो, सामिया ने इस खानदान को बेटा नहीं दिया बल्कि इससे बेटी ली है।
4: मैंने मक्का जाने वाले कारवां में पहले से ही दो जगह खाली रखी है।
2: बाबा आपने मेरी मुहाल आरज़ू को मुमकिन बना दिया।
5: किसे ढूंढ रहे हो नाइम?
4: कूफे का चप्पा चप्पा तलाश करो और उसे ढूंढो। जब तक मिल ना जाए वापस ना लौटना।
1: अम्मी से मुलाकात नहीं करना चाहते।
6: चाहता हूँ लेकिन दादाजी आप।
1: औहद क्या?
6: हमेशा अम्मी पर चिल्लाते रहते थे आपकी तरह, इसलिए वो चली गई है।
3: जाओ खत उसके मालिक तक पहुँचाओ, शायद शायद दूध बख्श दो।
4: बीवी की तलाश में आए हूँ, देर कर दी। उसे राम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, खुद उसे राम कर दिया।
1: राम कर दिया तो अभी कहाँ है मेरी बीवी, कहाँ है वो?

0: बड़ी बेबसी है। अफसोस कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकता।
1: उसकी कब्र का तो निशान भी नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं। जब तक थी

0: दिल को बड़ी धारस थी। मैं कितना बेगैरत इंसान हूं। बच्चों का क्या करूं, जुदाई का दर्द कैसे बर्दाश्त करूं। काश मैं पैदा ही ना होता मां।
1: कैसे पता, शायद आप उससे ज्यादा परेशान हो और मुझे पता ही ना हो। अभी आपकी जुदाई का जख्म नहीं भरा था कि उसने आपकी कनीज से शादी कर ली और ये बेटी भी हो गई।
0: आपकी मजलूमियत मुझे मार डाल रही है कि आपका मकाम भी एक कनीज ने ले लिया। इस बदकिस्मती और मजबूरी से तंग आ गया। मुद्दा तो ना समझी के रास्ते पर चलता रहा, ना कुछ कहा ना कुछ सुना। माँ दुआ करिए कि अलवान के सामने खुद को बहादुर बाप दिखा सकूं, ताकि एक बेटा आप में से सीखे कि बेजा किसी की इताअत नहीं करनी चाहिए। कहाँ नईम की माँ,

0: पांच सिक्के तुम्हारे और एक सिक्का मेरा, तीन सिक्के तुम्हारे लिए, दो सिक्के मेरे लिए, काफी है?
1: कम है।
0: सब ले लो, अकेले ना खाना। जो काम भी करो अपने भाई का ख्याल रखना, उसका हिस्सा ना भूलना।
1: क्या इतने सिक्कों से शाम जा सकते हैं दादा जान?
0: मैं जो कहता हूँ अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, पूछते हो कैसे? बजाय उसके कि सफर की तैयारी करो और सिक्कों को बर्बाद करो। उसका आधा सिक्का नामुसान को दो और बाकी में खुद ऐश करो।
1: शुक्रिया।
0: दो सिक्के तुम्हारे, दो सिक्के मेरे।

0: आराम से ठीक है।
1: अरे देख क्या रहे हो, उसे नीचे उतारो।
2: सलाम।
3: सलाम।
2: आप तीरंदाज है ना?
3: हाँ।
2: वाकई तीरंदाज है?
4: तुम भी तो तीरंदाज हो प्यारे बच्चे।
2: हाँ, मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर एकदम इनकी तरह मुहाफिज बनूं।
0: अरे बेटा, मना किया था ना मुहिबे अली के सिवा किसी से बात मत करना। चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी।
5: हज का तवाफ सख्त है और तुलानी भी। ये अंजाम देना है ये नहीं, उसमें कहीं तवाफुन दिशा न भूल जाना कि मेरी बेटी ना महरम रह जाए।
6: जनाब आहर, ये अभी जवान भी है और काफी समझदार भी है।
3: शुक्र खुदाया, मेरा पहला हज नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो तमाम आमाल को अंजाम।

0: का ख्याल रखना।
1: फोफी।
0: बोलो बेटा।
1: अगर हमारी अम्मी मिले तो उनको ये खत दे दीजिएगा।
2: उन्होंने बताया नहीं था कि वो शाम गई हैं। कुर्बान जाओ, खाने खुदा कहाँ और शाम कहाँ?
1: ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है, बस बताया कि सफर पर जा रही है।
2: ये खत अपने पास ही रखो, लेकिन वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी माँ से मिली तो उनका हाथ पकड़ कर घर वापस ले आऊंगी। वादा।
0: अलवान बेटा, मेरे पास आ जाओ। उसी ने वादा किया है ना बेटा। अब परेशान मत हो तुम, शाम तक खत को भेज देंगी ताकि तुम्हारी माँ तक पहुँच जाए, ठीक है?
3: ये था कि घर वाले खुदा हाफिजी के लिए आए ना कि ये।
4: शायद कोई हुकूमत कुफ्र के साथ बाकी रह जाए लेकिन जुल्म के साथ टिक नहीं सकती।
5: जुल्म टिक नहीं सकती,
6: जुल्म मिट के रहेगा।
7: जुल्म मिट के रहेगा,
6: जुल्म मिट के रहेगा,
8: जुल्म मिट के रहेगा,
6: जुल्म मिट के रहेगा,
8: जुल्म मिट के रहेगा।
9: खामोश हो जाए, शोर और गुल से कोई काम नहीं बनने वाला। कोई एतराज है तो गवर्नर से बात करनी होगी, नहीं तो उससे ऊपर अपनी बात को पहुंचाएं। हम सिर्फ यहाँ निगहबान हैं और ये जिंदान है, दारुल हुकूमत नहीं। जाए यहाँ से, चले जाएं, चले जाएं।
4: ज़ैद, तुम अलवियों के दस्तरख्वान के टुकड़ों पर ही पले बड़े हो, नमक हमारा खाते हो और तुम उन नासेबियों की तरफदारी कर रहे हो। हाँ,
9: अगर जनाब हम रह गए तो कयामत आ जाएगी। चले जाओ यहाँ से।
10: तुम क्या बकवास कर रहे हो? कबीले के नौजवान बिला वजह कैद हैं और तुम्हें तो मैंने बचपन से ही पाला है। तुम चाहते हो कि तुम लोगों की आवाज दबा दो? कब तुम्हारे दिल रोशन होंगे अल्लाह ही जानता है।
4: ए इब्ने ज़ैद, तुमने थोड़े से सिक्कों के एवज में खुद को बेच डाला, अपने बीवी बच्चों का पेट बेगुनाह कैदियों की दादो फरियाद से भर रहे हो तुम। क्या सुन्नते नबी से यही सीखा है तुमने?
10: सिक्के चाहिए, ये लो,
4: ये लो,
10: ये सिक्का लो और अपना रिश्ता तोड़ दो। हुकूमत तुम्हारी वजह से टिकी है,
4: ये लो।
10: तुम अगर यहाँ रुकावट ना बनो तो ये हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। हटो यहाँ से, हमारे रास्ते से हटो।
4: खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा, मिट के रहेगा।
1: इस बच्ची का ख्याल रखिएगा।
4: दरवाजा तोड़ दो,
0: का अल्लाह के घर को छूना वो सआदत है जो हर किसी को नहीं मिलती। मेरी बेटी नायला, वहाँ पहुँच के मुझे भूल ना जाना तुम। अगर दिल तंग हो और इस कनीज की आगोश ना मिले तो ये शाल पहन लेना, ये मेरी याद दिलाएगी तुम्हें। तुम्हारे वापस आने तक ये तुम्हारे हाथों अमानत है। ये पहला कपड़ा है।

0: जो तुम्हारे वालिद ने मेरे लिए खरीदा और मुसलमानों के मुताबिक मेरे पर्दे का इंतजाम किया।
1: ये नायला की सबसे कीमती अमानत जो तन्हाई के वक्त आपका पूरा साथ देगी। जल्दी आ जाऊंगी,
0: मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
2: अल्लाह की नुसरत और फतह करीब है।
3: दरवाजा तोड़ के कैदियों को रिहा कर दिया है।
4: जल्द से जल्द दरवाजा बंद कर दो, कोई यहाँ से बाहर न जाने पाए।
3: कहाँ? सब लोगों को मायूस हो जाना चाहिए कि जनाब नुमान को हुकूमत चलाने की कुदरत नहीं है। जिंदान के दरवाजा टूटने का खानाए खुदा के मुसाफिरीन से क्या रब्त है?
5: हज का कारवा है ऐ मर्द मुसलमान, देर से निकलेंगे तो रात हो जाएगी।
6: हमें ना रोको अमीर, जानते हैं आज के दिन के लिए कितना इंतजार किया है हमने।
7: अल्लाह के घर जाना हमारे लिए हराम क्यों करते हो?
5: मगर ये तो कोई बात नहीं हुई।
8: जनाब अमीर, जल्दी करें, कारवा में जनाब औहद की बेटी भी है। कारवा में कोई भीड़ नहीं है। जनाब औहद,
9: आप कुछ कहते क्यों नहीं, इसका कुछ तो हल निकालिए।
10: अगर छोड़ रहा हूँ तो फकत जनाब औहद।
3: जल्दी से दरवाजा खोल दे, चले आगे बढ़ो।
10: अगर छोड़ रहा हूं तो फकत जनाब।
11: हिलाल, अपनी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूं। खुदा हाफिज बेटी।
12: इससे पहले कि माहौल खराब हो बेहतर है हम रवाना हो जाएं।
13: लेकिन आया तो अभी तक नहीं आई,
12: बहुत इंतजार कर चुके हैं।
3: चलें, छोड़े उन्हें, चले चले चले चले।
14: कहाँ चले? अभी तो कोई नामा बता भी नहीं मिला।
3: चले, छोड़ो उन्हें, चले।
0: संभल के जाना।
12: इससे ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, चले सवार हो जाओ।
15: बहन, किस फासिद को ढूंढ रही हो?
16: फासिद खुरासानी, अरब में ही था, अजम था, बड़ी बड़ी आंखें और बदाम ही की तरह था।
15: पहचानता था?
16: पहचानते थे, यानी यहाँ नहीं है।
15: बाबा जरा आप पीछे जाएं, जरा सब्र करें, हम सबको आजाद करवाएंगे।
17: बहन दरअसल बात यह है कि काफी दिनों पहले उसे यहाँ से ले गए।
3: यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
16: कहाँ ले गए हैं, कुछ बताया नहीं?
17: इस जिंदान की अज़ियतें सख्त भी हैं और जानलेवा भी।
15: यहाँ से चली जाए।
16: क्या मतलब?
15: इतनी सख्त हैं बहन कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बच्ची को यहाँ से लेकर चली जाइए।
18: नहीं रुक सकती, अभी यहाँ से चलना चाहिए।

0: ये आपकी अमानत है या अली, या अली।
1: मैं नहीं जाऊंगा, कहा ना आपसे।
2: बस करो।
3: Oh.

0: पता है वहां जाकर बहुत अच्छा लगा।
1: काश मैं उसके पास होता।
2: तुम अब ये कह रहे हो इलाल? ये तो कारमा चलने से पहले बोलना चाहिए था ना।
1: बात बहुत आसान है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मुंह ना खोलूं कि क्या देखा और क्या हुआ।
2: जितना भी ज्यादा सख्त हो, तुमसे सुनना फिर भी आसान था। कम से कम एक सहारा तो था, अब वो अकेली रह गई। पता नहीं क्या होगा उसका।
1: एक तरफ बासित की मौत की बेखबरी थी, दूसरी तरफ तुमसे निकाह करने का मसला। अगर मैं मुंह खोल देता तो हमारा निकाह मुमकिन नहीं होता।
2: अच्छा, निकाह के बाद क्या मुश्किल थी?
1: बाद में मैं नहीं बता सका।
2: वाकई ये इंसाफ था? जरा एक बार खुद को उसकी जगह रखकर सोचो। सिर्फ उस खत की वजह से दो बच्चे यतीम हो गए और एक औरत बेवा हो गई। कुछ भी हो, जिस माँ को मैं पहचानती हूँ वो अपने दामाद के मरने पर इफ्तिखार भी करती है। बासित की मौत के अलावा भी कोई बात छुपाई है तुमने मुझसे? हिलाल, तुम ही मेरी पनाहगाह हो। मेरी दुनिया में ऐसे ही बहुत बेअमनी और तन्हाई है, अब जो है उसको खराब ना कर देना।
1: सोच रहा था कि शादी की रात मैंने हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन अभी भी मुझ पर शक है।
2: दरख्वास्त मेरी तरफ से नहीं थी कि आप पीछे हट जाएं।
1: वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कुर्बानी चाहती थी और मैंने कहा बिस्मिल्लाह।
2: ये क्या बेरुखी है हिलाल? तुम्हारे ख्याल में अगर मैं किसी और का इंतखाब करती तो क्या वो इनकार कर देता? शाबाशी हो मुझ पर के गुरूर और इज्जत दोनों एक जगह बर्बाद कर।

0: सही तो यह है कि कोई भी मुझे मेरी माँ से ज्यादा नहीं पहचानता। मैंने गैरतमंदी से अपने दिल लगने के बारे में जितना भी उनको बताया, उनको यकीन नहीं आया। वो भी चिल्लाती रही, हिलाल अपने दिल की बात मत सुनो। सही कह रही थी, मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी। मेरे पास जो कुछ भी था सब तुम्हारे इश्क पर कुर्बान कर दिया। अब देखना यह है कि मैदान में जीत किसकी होती है, तुम्हारी या मेरी।
1: जीत उसी की होगी जो ज्यादा कुर्बानी देगा।

0: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं जनाब, मैंने पूछा कि इन दोनों रास्तों में क्या कोई फर्क है। जवाब मिला कि एक रास्ता हमवार है लेकिन लंबा है, दूसरा ना हमवार है लेकिन जल्दी पहुंचाएगा। हमारा काफिला वहीं से जाना चाहिए।
2: चले आगे बढ़ते हैं। वहाँ देखिए, वहाँ जमीन पर कुछ पड़ा हुआ है।
0: देखो क्या है।
2: हाय हाय हाय जनाब, जो मर चुका है।
3: कोई सामान भी है?
2: हाँ है।
3: यकीनन उसका कोई मालिक रहा होगा। भेड़िए का निशाना बन गया होगा या सांप बिच्छू का।
0: आसपास देखो, कोई मौजूद है?
2: हे,

0: Right.
1: काफिले का ख्याल रहे, बिल्कुल भी गफलत मत करना।
0: ये मर चुका है, लगता है यहीं पे इसने दम तोड़ा है।
2: यकीनन गर्मी और भूख से भरा होगा।
1: ऐसी बात करो जो समझ में आए मोमिन। अगर बयाबा की गर्मी में ऊंट मरने लगे तो हम और तुम कैसे बचे हुए हैं?
2: यहाँ एक लाश पड़ी है, शायद यही उसका मालिक हो।
1: लगता है भाग रहा था, किसी ने मार डाला।
3: अल्लाह किसी की ऐसी मौत ना लिखे।
2: मुसलमान होने के नाते हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। शायद कोई आए और इसे पहचान कर इसके घर वालों को इसके बारे में इतला कर दे।
4: अगर दो दिन ये ऐसे ही धूप में पड़ा रहा तो इसकी शक्ल और सूरत का नामो निशान मिट जाएगा। फिर कैसी निशानी और कैसी इत्तला। क्या कर रहे हैं आप? जनाजे का एहतराम जरूरी है।
5: ये गला घोटने का निशान है। बिच्छू से पहले किसी ने इसको मार दिया है। तुमने रास्ते के बारे में क्या बताया था?
1: अल्लाह का कुरान थोड़ी है, जो जिस रास्ते के बारे में जानता है वही इंतखाब करता है। ये वाला रास्ता एक घंटा जल्दी पहुंचाता है और उसका कारवां सरा मेरा जानने वाला है। अभी तक जिसने भी सफर किया है इसी रास्ते से गए हैं।
5: ये लाश और मरा हुआ ऊंट दोनों बहाना है। ये लोग चाहते हैं कि आधी रात को हम पर

0: ना करें, हमें आम रास्ते से नहीं जाना चाहिए।
1: काफिला सालार तुम हो या मैं, तुम जो मुहाफिज कमांडर हो और नौकर चाकर लेकर चल रहे हो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे दबाव में आकर काफिले का रास्ता बदल दूं।
0: लुटेरे चाहते हैं कि हम डर कर रास्ता बदल लें ताकि आराम से वो हमें लूट सके, लेकिन अक्ल कहती है कि लाश और घोड़ों के पैरों के निशान को हमें बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए।
2: बात तो सही कह रहे हो इलाल, लेकिन मिट्टी से पता लग रहा है कि इस रास्ते में बिच्छू हैं, और अगर बारिश हुई तो हर जगह से बिच्छू निकलेंगे। ये रास्ता ज्यादा अमन वाला है।
0: बिच्छुओं से मुकाबला लुटेरों और राहजनों के मुकाबले से आसान है।
1: इतने साल हम गए, कोई लूट मार नहीं हुई, इस बार आप लोग आ गए तो रास्ता ना अमन हो गया।
0: मेरे साथ मेरी नई दुल्हन है जिसे मैं दांव पर नहीं लगा सकता। मैं और मेरे आदमी उस रास्ते को इंतखाब करेंगे।
2: ये दूसरा रास्ता कारवां सरा से बस एक मंजिल दूर है। मेरी राय तो इस जवान के साथ है। मेरे ख्याल से तो रास्ता बढ़ा लेना बेहतर होगा ताकि हम खतरे से बच सकें।
3: डरता हूँ कि कहीं मर न जाऊं और खाना काबा न देख सकूं।
0: मैं आप लोगों को खाना काबा तक पहुंचाऊंगा।
1: जैसे तुम सब कोई मेहमान हो और मैं इनके घर का नौकर, और तुम अब अगर किसी को एक कांटा भी चुभा तो तुम जिम्मेदार होगे।
0: मुझे कबूल है,
2: इस जिम्मेदारी को हल्का मत समझना।
0: परेशान ना हो, इत्मीनान रखें, बच्चे को यहाँ से ले जाएं। चलो।

0: जौजा के लिए तुम्हारी नई नई शादी हुई है?
1: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
2: हिलाल, तुमने हमारी जानें बचाई हैं। एक रात आराम से सोना तो कोई मसला ही नहीं।
0: हाँ, ये आराम से रहो। आराम से रहो।
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया।

0: यही सब कुछ है।
1: शुक्रिया। अब इत्मीनान से नकाब उतार लो और आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना।

0: इस तरह किसी को छुपकर नहीं देखते।
1: आपने वादा किया था कि पहुंच जाएंगे तो हिलाल की कमान को अपने हाथों से छू सकूंगा।
0: सही कह रहे हो। आओ। ये लो।
2: बाबा जी

0: क्या यहाँ का मालिक जानता है कि तुमने कौन सा खजाना उसकी जमीन में दफन किया?
1: अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो कोई नहीं समझ पाएगा जो एतराज करे।
0: अपने साथ दूसरे बच्चों, औरतों और मर्दों की भी जान का ख्याल रखो।
1: सबसे पहले तो मैं अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि हर बिच्छू 100 सिक्कों का है।

0: भाई सुनो, एक सवाल है मगर उसका जवाब मेरे और तुम्हारे दरमियान ही होना चाहिए। अमन और अमान की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इंसान बगैर उसके रात को ठीक से सो नहीं सकता। लुटेरों का खतरा हो तो मैं अपने मुहाफिजिन से कह दूं।
1: आराम से रहिए, 40 साल हो रहे हैं इस कारवा सरा को लुटेरों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
0: एक दूसरी जहमत भी देनी थी
1: जी, बताइए।
0: रात को हमने रास्ता बदल दिया था, अब डर है कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। सुबह को हमें सही रास्ते की निशानदेही कर देना
1: जी। हम जरूर मदद करेंगे।

0: मैंने कहा मैं उन्हें कल वापस कर दूंगा। कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जब मेरी निगाहें खाना काबा पर पड़े तो मैं दुआ करूं।
1: ए मेरे खुदा, कितना खूबसूरत है ये। काफी सहमत हो गई। यहाँ अच्छा लग रहा है?
0: अच्छा लग रहा है।
2: या अल्लाह, कितना अच्छा हो गया।

0: अकेले क्यों, किसी की मदद ले लेती?
1: सब थके थे, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी।
0: खुदा जज़ाए खैर दे, काफी साफ हो गया।
1: अलबत्ता एकदम अकेली भी तो नहीं थी।
0: बहुत खूब, शुक्रिया छोटे कमांडर।

जाइए, सब लोग उठ जाइए, अपना बिस्तर से बैठिए। आ जाइए, इतनी तेज बारिश। उठ जाओ, उठ जाओ।

सामने अपने आप को दिखाना है, ना मुझे अपने आप को कहीं मनवाना है, कोई काम नहीं करना है। क्योंकि एक और बड़ी मुश्किल होती है, ये जो क्लोज़ कम्युनिटीज़ होती हैं, अभी मसलन कराची बहुत बड़ा शहर है, अब इसके अंदर आबादी आपको पता है 20 मिलियन से ऊपर इसकी आबादी है, तो ये क्लोज़ कम्युनिटी यहाँ पे नहीं बन पाएगी। हाँ ये होता है कि मसलन कोई बाउंड्री वॉल के अंदर एक लोकेलिटी डेवलप हो गई, जैसे मैं ख़ुद जिसमें रहता हूँ ऐसे एक क्लोज़ है, लेकिन मामूलन ऐसा नहीं होता, बड़ा शहर है, सब मुख्तलिफ है। लेकिन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, आप लोगों के यहाँ है कि भाई आप एक सेंटर हैं, एक सेंटर में आप आते हैं जाते हैं, तो एक टाइप ऑफ क्लोज लिंक डेवलप हो जाता है। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई आदमी कुछ भी कर रहा होता है वो हाईलाइट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात है कि भाई आपके पास कम्युनिटी में कनेक्शंस हैं, आप में कोई अच्छा काम करना है तो आप कर सकते हैं। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि यही नीयत में आ जाता है कि मुझे ये स्टेटस मिलना है, हाईलाइट होना है, अब बड़ा मसला है फिर। अगर किसी की नीयत में ये आ जाए तो ये समझ लें कि ये रियाकारी की पटरी पे चढ़ गया है, बहुत मुश्किल है कि ये अब वहाँ से उतरेगा और ये जहन से निकाले कि भाई मुझे हाईलाइट नहीं होना है। इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इमाम के लिए, मैं कर रहा हूँ मसलन अपनी आखबत को बनाने के लिए। तो ये मसाइल थोड़े से आते हैं नीयत के। असल काम क्या है? असल काम अर्ज कर दिया आपकी खिदमत, उनकी खिदमत के लिए कोई काम अंजाम दे दें, किसी के दिल को खुश कर लीजिए, उनके उलूम की नशर और तरवीज का हिस्सा बन जाइए और इंशाअल्लाह उनकी तालीमात पे अमल कर लें। और उनकी तालीमात पे जब आप अमल कर रहे हो तो एक बस आखिरी बात और इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा, वो ये कि देखिए डेवलपमेंट का रास्ता रुकना नहीं चाहिए। मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है, मुमकिन है कोई यहाँ पर हो 70 साल से ऊपर हो, मुमकिन है कोई यहाँ पे बैठा हो 20 साल के नज़दीक हो, डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए। चाहे छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन मैं और आप मुसलसल अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के निज़ाम के अंदर बढ़ते चले जाएं, इमामत की समत बढ़ते चले जाएं। कभी भी ये नहीं सोचिए कि अब रुक जाऊं, कोई बात नहीं है, दूसरों से बेहतर हूँ, ये तो तबाही है फिर, बर्बादी है फिर। जैसे ही कोई इंसान ये सोचने लगता है, इसका मतलब ये ट्रैक से आउट हो गया, ये बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। तो मुसलसल छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ें और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए, इस मकतब की खिदमत के लिए अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता वक्फ करते चले जाएं। गलत नीयत का मुकाबला ज़रूर कर लें, गलत नीयत कभी ना आए मैं हाईलाइट हो जाऊँगा, मैं प्रोमिनेंस मिल जाएगी, ये सब, चूँकि ये सब मुज़िर है, ये सब नुकसानदेह है, फिर आखबत में खुदा न करे नऊज़ु बिल्लाह ताला मामला ख़त्म ना हो जाए कहीं। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम लुत्फ फरमाए और वो मोहब्बतों को समझने वाले हैं। ये दुनिया और इसके पीछे जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान किसी लकड़ी के पीस से मोहब्बत करे। भाई मैं इस लकड़ी के पीस को बहुत चाहता हूँ, कोई बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस है, कोई मास्टर पीस है, किसी ने बनाया है, बहुत महंगा था मैंने ख़रीदा और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मोहब्बत दो तरफा है या एक तरफा है? एक तरफा है। आप इसे चाहते हैं या आपको चाहता है? नहीं, ज़ाहिर चाह भी नहीं सकता, लकड़ी है, लोहा है, दुनिया है, दुनिया की कोई चीज़ दो तरफा मोहब्बत नहीं करती। मानवियत होती है, रूहानियत होती है, वो दो तरफा होती है। आप 8वें इमाम के चाहने वाले हुए फिर, ये इमाम है, जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा वो आपको चाहते हैं। सईद शोदा के गम में रोए? हाँ, सईद शोदा नहीं चाहते, कैसे मुमकिन है? औलाद अमीरुल मोमिनीन के गम में रोए? हाँ, सईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं चाहती, बिल्कुल बोलो 8वें इमाम के गम में बैठे हो? हाँ, बोलो 8वें इमाम नहीं जानते? बिल्कुल जानते, मोहब्बत दो तरफा है।

काश कि मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती कि मैं यहीं ठहर जाऊं और आपके फिराक में अश्क बहाऊं या मदीने की तरफ लौट जाऊं और जहां कहीं भी मुमकिन हो आपके सफर की हकीकत को बयान करती रहूं, आपके पास ही ठहर जाऊं और अपनी माँ से जुदाई को बर्दाश्त करूं, या फिर अपनी माँ के पास चली जाऊं और आपसे दूरी का गम

सा हूँ, यही कुम में आपके कब्र मुबारक की मुजावर बन जाऊं और आपके जायरीन की खिदमत करूं, या आपकी सफीर बनकर मदीना चली जाऊं। ऐ काश मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती।

0: या अल्लाह, मरहूम हारून पर रहमत फरमा और एहसान फरामोशों पर अपनी लानत भेज।
1: तुम्हारी ये जबान जो दुआ और लानत के लिए इतनी चलती है, तो फिर तुम रसूल अकरम की ये हदीस इन सब के सामने क्यों नहीं सुनाते? उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह बेरी का दरख्त काटने वाले पर लानत करे।
0: जबान संभालो अपनी, जानते हो कि क्या कह रहे हो? इसने मरहूम हारून की तौहीन की है, अल्लाह की लानत हो इस पर।
2: मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, मदीना के हालात मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब थे। अली इब्ने मूसा की वली अहदी के जरिए लोगों के एतराज की आग को बुझाना मकसूद था, लेकिन हुकूमत अब्बासी से मुखालफत की वो आग बुझी नहीं थी, बल्कि राख तले दबी हुई थी। मेरे लिए ऐसे मौके पर जब मैं हाकिम के सामने किसी को ले जाने पर मामूर हूँ, सबसे अहम मामला अमन व सलामती का है, और मैं सफ़र के पहले मरहले में ही समझ चुका हूँ कि यहाँ अमन व सलामती का बहरान है।
3: अमीर,
2: ये तो फकत एक शख्स को ले जाने का हुक्म है। अली इब्ने मूसा के फर्जंद और जौजा को दारुल हुकूमत नहीं बुलाया गया?
4: मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, मुझे क्या मालूम कि पैगाम में क्या लिखा है।
2: अगर ये इतना ही आम और फौरी था तो तुम इतनी देर से क्यों लेकर आए मेरे पास?
4: मेरे जिम्मे एक और काम भी था, इसहाक इब्ने मूसा पर नजर रखनी थी मुझे। वो मक्का से यहां पहुंचा है ताकि सफर में साथ जा सके।
2: इसहाक इब्ने मूसा,

0: ये हमारे भाई मौला रिजा का पैगाम है आपके लिए। हम सब भाई सफर में आपके साथ होंगे।
1: हाजियों को पहले ही मक्का से मर्फ की जानिब रवाना कर दिया है मैंने,
0: ताकि मैं आपके हमरा सफर करूं।
2: क्या कोई है इस घर में?
3: सरबरा कौन है इस घर का?
4: तुम्हारे बड़ों ने सिखाया नहीं कि बगैर इजाजत किसी के घर दाखिल नहीं होते?
3: इस हुकूमत के हुक्मनामे को किसके हवाले करूं मैं? इस हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद ही मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज का दिन ढल ना रहा होता तो मैं कल का इंतजार नहीं करता। वलीअहद की हमशीरा को कल दारुल हुकूमत का सफर अख्तियार करना है। कोई सवाल नहीं करेगा, फौरन तैयारी करो जाने की।

0: आप लोग अंदर जाइए, सलामत रहो।
1: शुक्रिया। पानी पानी,
2: ठहर जाओ, पानी अभी नहीं पिलाना इसे। जख्म से कपड़ा हटाओ, देखूं जरा।
0: बर्दाश्त करो मेरे भाई।
2: एक साफ कपड़ा लाकर दो मुझे।
3: उम्मे अस्मा,
2: इससे इसके जख्म को साफ करो। वो चराग पकड़ाओ जरा मुझे।
0: जख्म काफी गहरा है,
2: बहुत हसास जगह पर लगा है, काफी वक्त लगेगा ठीक होने में। मैं अभी आती हूँ। मरहम बना लिया तुमने?
3: एक बार देख लीजिए,
2: ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसमें से कुछ और शामिल करो, बहुत ही मामूली से नमक का भी इजाफा करो इसमें, और अच्छी तरह मिलाना।
3: अब क्या करेंगे?
2: तुम परेशान मत हो,
3: बहुत ज्यादा खून बह चुका है उनका।
2: जानती हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा।
3: मैं कोई मदद कर सकती हूँ? दवा बनाते हुए कोई जिक्र वगैरह नहीं पढ़ती क्या तुम?
4: मैं अपनी वालिदा से तबाबत सीख रही हूँ, मुझे जादू टोना नहीं आता।
3: अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम मुतमइन तो हो ना कि जख्म के लिए यही मरहम बेहतर रहेगा?
4: बेहतर तो ये है कि किसी को जख्म लगाने पर मजबूर ना किया जाए।
3: तो फिर तुम क्यों अपनी जुबान से वार कर रही हो?

0: हुई। अच्छी यादों का तस्करा करते हुए बात मुझ तक आ पहुंची और बताया कि बीबी ने अपने घर की खात्मा की बेटी यानी मुझे अपने भाई हमजा के साथ अज़दवाजी रिश्ते के लिए मुंतखब किया।
1: मुझे बहुत खुशी है कि इस सफर में तुम बीबी के हमराह हो। मेरी बीबी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना।
0: अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। सफर के लिए तैयार हैं? ये वालिदा ने भेजा है, सफर में काम आएगा आपके।
0: बहुत शुक्रिया। अंदर आइए।
2: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश आमदीद।
2: तबीयत कैसी है आपकी?
1: शुक्र है अल्लाह का।
0: ये लीजिए।
1: बहुत शुक्रिया बेटा।
2: वालिदा ने कहा है कि अगर आप चाहें तो सफर पर चल सकती हैं हमारे साथ।
1: नहीं बेटा, ये हकीकत है कि मुझे बहुत याद आएगी तुम दोनों की, मगर मेरे अंदर सफर करने की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ खातून और मोहम्मद इब्ने अली की खिदमत में रहूँ अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। बीबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना मेरी प्यारी बेटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मदीना में दोबारा मिल बैठेंगे, पूरा यकीन है मुझे।
0: अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन उस वक्त मैं एक नातजुर्बाकार शागिर्दा नहीं रहूंगी जिसकी तबाबत में आसानी से खामी ढूंढी जा सके, बल्कि ऐसी तबीबा होंगी जिसने दारुल हुकूमत के माहिर तबीबों से तबाबत सीखी होगी और मेरी अपनी एक पहचान होगी
1: इंशाल्लाह। मेरे जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले।
2: आपके जिगर का टुकड़ा है और मेरी आंखों का नूर है।
1: अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे।
0: सफर एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जो भी हो लेकिन खुदा हाफिजी की नागवारी से शुरू होता है, और सफर से एक दिन पहले की शब खुदा हाफिजी में गुजरी। एक भोपी की खुदा हाफिजी अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से, एक मौलमा की खुदा हाफिजी अपनी शागिर्द खवातीन से, और अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार से खुदा हाफिजी। बनू हाशिम में खूबी ये है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी ख्वातीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते,

0: किस रास्ते से जाएंगे?
1: सहरा के रास्ते से जाएंगे।
0: सहरा के रास्ते से?
1: बिल्कुल।
0: वो तो खतरनाक रास्ता है।
1: खतरनाक है लेकिन मुख्तसर है।
2: सफर शुरू करें। रास्ता बहुत तूला नहीं है और दिन छोटे हैं। हमें फौरन रवाना होना है।
1: तूलानी सफर उन जखीम किताबों की मानंद है जिन्हें पूरा पढ़ना मुश्किल है। बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफर खुशगवार भी हो सकता है और दुश्वार भी। ये सफर इस्तराब का सामना करेगा, आसानी या दुश्वारी को मुसाफिरों के सामने पेश करेगा और तरह तरह की फिक्रों को जन्म देगा, लेकिन नहीं मालूम कब क्या वाकया पेश आएगा। मुख्तसर लेकिन नाशनास रास्ते सफर के मामले को और पेचीदा करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचने का हुक्म मिला था।
3: काफले को यहाँ रोकना पड़ेगा। रेत का तूफान आ रहा है।
4: रेत का तूफान आ रहा है।
3: सब हम बिचारों को हाथ बना ले।

0: ऊंट के दूध की लस्सी सहरा में गर्मी के एहसास को कम करती है। आप लोग क्या हज से वापस आ रहे हैं? सहरा का रास्ता क्यों इख्तियार किया? ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है।
1: ए बुजुर्गवार,
0: आप तो इनके साथ थे, ये रास्ता खतरनाक है कि आपको मालूम नहीं था?
2: क्या कह सकते हैं भाई, इस रास्ते के इंतखाब पे मजबूर थे।
0: क्या कहा, मजबूर थे? आप लोगों के साथ तो खवातीन और बच्चे भी हैं।
3: ए बादिया नशीन, क्या तुम हमेशा लस्सी के जायके को अपने गैर मरबूत सवालों से इसी तरह बदजायका करते हो?
4: हो सकता है कि हमें देर हो रही हो।
5: देर से पहुंचना बेहतर है बजाय इसके कि इस बयाबान में अपनी जानों को खतरे में डाला जाए।
2: रास्ते का तायुन करना हमारा काम है, आपका नहीं जनाब इसाक।
5: ये रास्ता थोड़ा तूलानी है लेकिन पुरअमन है, और उस रास्ते से बेहतर है जिसकी तजवीज हमें ये शख्स दे रहा है।
6: तूलानी होने की वजह से क्या वो शख्स इस रास्ते से जाने पर राजी हो जाएगा?
5: काफिला सालार हम हैं, इस सफर में वो हमारे साथ हैं। हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से हमारे भाई को ले जाया गया।
7: हम गैर मधु मेहमानों का क्या करेंगे? लगता है इन मामूरों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो हमारे काफिले के साथ साथ हैं।
5: वो मामून अब्बासी के जासूस हैं। जब तक मर्व में सब कुछ ठीक है हमें इनसे कोई खतरा नहीं। हमारी सफर के हवाले से परेशानियों को देखकर बीबी ने फरमाया कि हमें परेशान होने के बजाय सफर की इन जहमतों से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि जिस रास्ते से भी गुजरें वहाँ बयान हदीस और वाज़ो नसीहत की मजालिस का इनेकाद किया जाए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दारुलहुकूमत से आए मामूरों की मौजूदगी में ये मजालिस कैसे मुनक्किद की जाए, और दूसरी तरफ बीबी के इत्मीनान की वजह से मुतमईन भी था। कई रोज़ो शब सफ़र में गुजरे हम बयाबानों सहराओं और सरसब्जो शादाब इलाकों से गुजरते हुए जा रहे थे। हर रास्ते पर लोग हमें खुश आमदीद और खुदा हाफिज़ कहने के लिए मौजूद होते थे।
8: आज हम सब इस मर्दे मोमिन के मेहमान हैं, शब में यहीं कयाम करेंगे।
9: अस्सलाम वालेकुम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह कबूल
10: अल्लाह कबूल करे।
11: जितना मुमकिन हो इन मामूरों को मेहमान नवाजी में मसरूफ रखो।
5: हमने आपको जहमत में डाल दिया।
11: कैसी जहमत फरजंदे इमाम, आपकी तशरीफ आवरी भाई से मुसर्रत है। आप लोगों की बरकत से अल्लाह ने आज कई साल बाद हमारे इस कबीले को बेटी की रहमत से नवाजा है जो हमारे लिए खुशी का बाइस है।

0: कितना अच्छा हुआ कि आप आई। आज कितना मुबारक दिन है। मैं जानती थी और सबसे कहती थी कि ख्वाबो ख्याल इस कदर वाज़े और यकीनी नहीं होते। कितने सालों से मैं ये हसीन ख्वाब देख रही थी। काश के वालिदा जिंदा होती। एक वही थी जिनको यकीन था कि उनकी बेटी के मुकद्दस बीबी की ज़ियारत की आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। वो कहती थी, इसमें कोई फ़र्क नहीं कि तुम उन्हें जागते हुए देखो या ख्वाब में, चाहे बुढ़ापे में देखो या फिर जवानी में। मुकद्दस बीबी का नाम चाहे मरियम हो या आसिया हो या फिर फातिमा, जब भी तुम उनकी ज़ियारत करो मेरा सलाम पहुँचा देना। मैं नहीं जानती थी कि आपका क्या नाम है, नहीं मालूम था कि आपकी ज़ियारत होगी या नहीं, मगर मुतमईन थी मैं, ये दिन ज़रूर आएगा, मुझे यकीन था इस बात का। आप पर मेरा सलाम, मेरी माँ का सलाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बच्ची का सलाम जिसकी विलादत आज ही हुई है। इसका नाम फातिमा रखा है, इसे कबूल फरमाए।
1: वो बहुत खुश थी उसकी बेटी की पैदाइश के मौके पर वो मुकद्दस बीबी के जिनकी ज़ियारत के लिए वो कब से बेचैन थी, आज वही उसके रूबरू खड़ी है और उसकी बेटी के कानों में अजान और अकामत कह रही है। और बीबी भी उस बच्ची का नाम फातिमा रखने पर खुश थी। दुख्तर रसूल अल्लाह हजरत फातिमा से मोहब्बत बीबी की मुस्कुराहट से जाहिर थी। देखते ही देखते मजलिस बयान हदीस में तब्दील हो गई और फिर बीबी ने रसूल अल्लाह की चंद अहदीस का जिक्र फरमाया जिनमें औलाद अली से मोहब्बत और उसके अजीम अजर को बयान किया गया था। हम सब बहुत खुश थे सिवाय एक शख्स के।

0: बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें खाने की। मेरे आगे से सारा गोश्त चुनकर खाए जा रहे हो।
1: खामोश हो जाओ, खाना भी सुकून से नहीं खा सकते तुम लोग। मैं सफर में गैर मामूली तब्दीली को महसूस कर रहा था। ये तय नहीं पाया था कि हम किसी नदी में गिरे पत्तों की तरह हैं, कि पानी जिस तरफ भी चाहे बहाकर ले जाए। रास्ते में जगह जगह अली इब्ने मूसा के हामी ग्रोहों की शक्ल में जमा हो जाते थे और जो चाहते कहते और सुनते थे।
2: इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुए हम। सवालनामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस ना लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इस्तराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा। जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यबना रसूलुल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान। हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे, इमाम की ज़ियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैजियाब हुए। हम खुश थे, लेकिन जब वो जवाब हमने इमाम की खिदमत में पेश किए तो हमारी खुशी में इजाफा हो गया। इमाम ने वो जवाब पढ़ना शुरू किए और हमारी मुस्तरिब नज़रें इमाम की मुतमईन निगाहों पर जमी हुई थी जब वो एक एक सतर को पढ़ रहे थे। और फिर इमाम ने हमारे परेशान लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाली और फरमाया, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बाप बेटी पर कुर्बान जाए, बाप बेटी पर कुर्बान जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बाप को अपनी बेटी पर ऐसे फख्र करते हुए नहीं देखा था। हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ऐसी बेटियां अता की जो आलिमा हैं।
3: बेटी, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। अस्मा, इसकी आंखों का रंग कुछ जर्द नहीं लग रहा।
4: जी, मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे पास कोई दवा है?
5: नहीं।
4: परेशानी की बात नहीं, मैं किसी से मंगवा लेती हूँ अभी।
5: बहुत शुक्रिया आपका।
4: ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? ये तो कमजोरी की अलामत है। मेरे ख्याल से दूध और शहद इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
6: बिल्कुल, उसके पीने से माँ में ताकत आएगी।
7: मेरा सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर। औलाद जहरा का काफिला हमारे इस गांव के पास से गुजरे और हम मेजबानी से महरूम रहें, कैसे हो सकता है? अली इब्ने मूसा की हमशीरा के काफिले की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है कि आप लोग मर्व जा रहे हैं। मूसा इब्ने जाफर की जिंदाने हारून में मजलूमाना शहादत हुई और उनके बेटे अली इब्ने मूसा आज महल में मैसूर हो गए। अगर इमाम हुक्म दें तो हुकूमत के तख्त की बुनियादें इन जवानों की मदद से हिलाकर रख देंगे।
8: तुम में से कोई एक यहां आ जाए, जंग की मश्क करने में क्या

0: बस इतना ही लड़ सकते हो? ये काफिला तो तुम लोगों की हिफाजत में जा रहा है, कोई मामूली चरवाहा भी तुम लोगों को आसानी से लूट सकता है।
1: देखा आपने इब्ने मूसा, हमारा हर जवान 10 जंगजुओं से अकेला लड़ सकता है।
2: अल्लाह इनकी शुजात और महारत में और इजाफा फरमाए।
1: इन जवानों की तलवारें अल्लाह के दुश्मनों के खून की प्यासी हैं।
3: ये सब्र मसलहत का दौर कब खत्म होगा जनाब इसहाक? आखिर मैदान जंग में कब उतरेंगे?
2: हम तो इस वक्त भी मैदान जंग में ही मौजूद हैं जवान।
3: तलवारें नियाम में रखकर
2: इताअत करके अपने इमाम की।
3: मसलहत सुलह और मकाम के हुसूल में जंग कहाँ है, वजाहत कीजिए जनाब।
1: खामोश, तुम्हें मेहमानों की इज्जत और औलाद अली की हुरमत का ख्याल नहीं है?
3: वो औलाद अली जिन्होंने जुल्फिकार को नियाम में छुपा रखा है, क्या उन्हें अपनी हुरमत का ख्याल है?
2: लगता है कि तुम जंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं जवान। तलवार चलाना, नेजा उठाना और तीर को कमान से फेंकना तुम जैसे जंगजू के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपने नफ्से अम्मारा से जंग करें।
3: मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा जनाब।
2: काश इन लोगों को ये समझाया जा सकता कि जंग फकत जिदाल और किताल नहीं, तलवारों की गूंज ने इनको बहरा कर दिया है और तलवारों की चमक ने इनकी आंखों का नूर छीन लिया है। अब इन्हें जंग का कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं देता, वो रास्ता जो इनकी जिंदगियों की जमानत बना।
4: अस्सलामुअलैकुम। जब से मुझे ये खबर मिली है कि आप तशरीफ ला रही हैं, मैं बहुत बेचैनी से मुंतजर थी आपकी। कई बार सोचा आपके लिए क्या बनाऊं मैं। बाग से ताज़ा फल तोड़कर लाई हूँ, कबूल कीजिए इन्हें। कई मर्तबा अपने गरीब खाने को साफ किया ताकि आपके शायान निशान बना सकूं इसे। अब इस नाचीज मेज़बान की एक छोटी सी ख्वाहिश है। सफ़र में आपने कई घरों को अपने बयान हदीस से मुनव्वर फरमाया है। कबीले की तमाम ख़वातीन आपकी मुंतज़र हैं। चाहती हूँ कि मेरे गरीब खाने को भी ये शर्फ बख्शें।
5: अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर ये सब एक या दो बार होता तो और बात थी, लेकिन हर बार मजलिस बयान हदीस में विलायत अली के मौजू को ही बयान करना, इसका कोई ख़ास मकसद हो सकता है। वो हमारे मंसूबे को नाकाम बना रही थी। वो जिन के दर्स व मजालिस को महदूद करने के लिए उन्हें मदीना से मर्व बुलाया गया था, अब वो उस काफिले में जो कि हुकूमती हिफाजत में ले जाया जा रहा है, रास्ते में आने वाली आबादियों में भी अपना दर्स व बयान जारी रखे हुए हैं।
6: खजूरें लाया हूं आपके लिए, मुंह मीठा कर लें।
0: अरे बहादुर, कैसे हो तुम?
2: ये लो ताजा रोटियां, बीबी ने भिजवाई हैं।
5: मेरे लिए?
2: हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं।

0: आप सलामत रहे बाबा।
1: आ गई तुम बेटी, बगदाद नजदीक है। बीबी को जाकर बता दो कि उनके वालिद का मजार ज्यादा दूर नहीं है।
0: हिजाज में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, गोया आग बरस रही हो, लेकिन इराक के बयाबानों में बारिश और बादलों से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इराक में हमारा आबाई घर रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। मैं जानती थी ज्यारत का इश्तियाक बीबी के सफर की थकावट के एहसास को कम कर देगा।

0: वो दिल जो विलायत के हामी नहीं, वही दिल है गुमराह और बेसबात। और जरा ये मिस्र समात कीजिएगा कि कैसे रसूल खुदा की वसीयत को भुला दिया गया। रसूल खुदा की वसीयत को भी भुला डाला जैसे हो एक आम बात। तवज्जो चाहूंगा, ये रस्में बशर है के बाद वफात, वसी ही चलाता है सब मामलात। कुछ लोग अहले बैत से दुश्मनी को दिल में छुपाए रखते हैं। जो दिल में छुपाए रहे दुश्मनी, अगरचे ये लगती है कुछ सख्त बात, वो सब हक पे होते अगर मुत्तफिक, तो उम्मत बिखरती ना यूं शश जिहाद।
1: तुम फौरन वहां जाओ और जाकर देखो कि वो खवातीन में क्या बातें कर रही हैं, कौन सी हदीस बयान कर रही हैं, किस सवाल का जवाब दे रही हैं और हुकूमत के खिलाफ क्या बातें कर रही हैं। जो कुछ वहां सुनना लफ्ज ब लफ्ज मुझे आकर बताना, बगैर किसी कमी बेशी के, बहुत एहतियात से। चलो जाओ अब।
2: मैं बहुत खुश हूं कि अपनी जिंदगी में इस वहदत का और आले रसूल की वली अहदी का ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ है मुझे। अब खून खराबे और इख्तलाफात का दौर खत्म हुआ, कैदोबंद का खौफ और हिरास नहीं रहा। अब्बास हो या फिर अली, चाहे चचा हो या चचा जाद भाई, दोनों ही रसूल अल्लाह के खूनी रिश्ते हैं। तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं।
3: बीबी पर उस खातून की साजिश आमेज गुफ्तगू नागवार गुजरी। उन्होंने अपने जद रसूल अल्लाह से हदीस नकल फरमाई और कहा कि उस औरत की तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम

0: सलाम को दूसरों के बराबर करार ना दिया जाए। और हजरत फातिमा जहरा की एक हदीस का जिक्र किया जो नस्ल दर नस्ल औलाद अली से रवायत हुई थी, क्या तुमने उसे फरामोश कर दिया है जो रसूल अल्लाह ने गदीर खुम में फरमाया था, जिस जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है। और ये भी फरमाया कि अली को मुझसे वही नस्बत है जो हारून को मूसा से थी।
1: तुमने हमारे दिलों को तस्कीन बख्शी, अल्लाह तुम्हारे वालिद के दर्जात बुलंद करे।
2: वालिद कहा आपने? उस पर अल्लाह अजाब नाज़िल करे।
1: तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने बाप को बद्दुआ क्यों दे रहे हो ऐ शायर?
2: क्योंकि उसके करतूत से वाकिफ हूं मैं। मैं शायद हूं कि वो जालिम शख्स फर्जंद रसूल को, जिनके मजार की आप ज़ियारत करने के लिए आए हैं, दर्दनाक अज़ियतें देता रहा। आखिरकार फर्जंद रसूल शहीद हो गए। उस वक्त मैं बहुत कम सिन था। मैंने खुदा की बेहतरीन और बदतरीन मखलूक को एक साथ देखा है।
1: थोड़ा ख्याल करो ऐ भाई, हो सकता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद हो जो तुम्हारी बातें हजम ना कर सकें।
3: अल्लाह आपकी ज़ियारत कबूल करे। आप चाहें तो मजीद रुक सकते हैं यहाँ। बगदाद में मुझे अपने एक देरीना दोस्त से मुलाकात करने के लिए जाना है। इस तरह आप लोगों को यहाँ रुकने के लिए ज़्यादा वक्त मिल सकेगा। तुम्हारा क्या नाम है ऐ शायर गुमनाम?
2: कशा जेम।
3: मुनाफिकाना शायरी में काफ़ी महारत हासिल है तुम्हें। तुम्हारा नाम याद रहेगा मुझे।
2: उनके बारे में काफी सुन रखा था।
1: एक जगह जमाना हूं।
2: यह भी सुना था कि उन्होंने कैद खाने में बहुत से दारोगों को हक की तरफ रागिब किया। और यह भी सुना कि वो हारून और रशीद की हुकूमत के खिलाफ कयाम करने का इरादा रखते थे। और यह भी कि वो रसूलुल्लाह के फर्जंद हैं। मैंने अपने नाना बिन शाहक के कैद खाने में जो देखा, उसे अगर मैं एक लफ्ज में बयान करना चाहूं तो वो लफ्ज होगा इबादत। लगता था कि उनका माबूद कोई और है और हमारा कोई और। हमारी सोच से बढ़कर वो अल्लाह की इबादत किया करते थे। वो तवील सजदे करते थे और अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करते थे। उनको देखकर मुझे अल्लाह से एक खास लगाव हो गया। लेकिन मेरा बाप बहुत संग दिल था। उसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था। वो मूसा इब्ने जाफर के गुज़िश्ता दारोगों से बहुत मुख्तलिफ था। पहले वालों की तरह वो इस जुर्म के इर्तकाब से मुनसरिफ नहीं हुआ और उसका दिल और हाथ हाकिम की तरफ से रसूलुल्लाह के फर्जंद की जिंदगी के चिराग को गुल करने के फरमान के इजरा पर बिल्कुल भी नहीं लर्जे।

मुझे उनकी शहादत की खबर के मदीना पहुंचने का बहुत अफसोस था, इसलिए कि मदीना को बगदाद से कभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी।

0: क्या तुम जानते हो कि जिस काफिले की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है वो जिन इलाकों से भी गुजरता हुआ आ रहा है वहाँ के लोग काबू से बाहर होते जा रहे हैं। क्या मामून अब्बासी को इस बात की खबर है कि तुम वली अहद की हमशीरा को किस रास्ते से लेकर जा रहे हो?
1: वो बेखबर नहीं।
0: आज तुमने देखा बगदाद में कुरैश के कब्रिस्तान में उस यहूदी जादे कशा जिम ने क्या किया? क्या ये भी बताया है तुमने मामून को? ये खतरनाक रास्ता जो मुहिबान औलादे अली से भरा हुआ है किसका इंतखाब है? इस खबर को भी जितना जल्दी हो सके तफसीली तौर पर दारुल हुकूमत तक पहुंचाओ। खबरदार कर रहा हूं मैं।
2: यह पैगाम हमारे मौला अली इब्ने मूसा तक पहुंचा दीजिए। लिखने वालों के नाम इसमें तहरीर नहीं किए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला पेश आए तो उन अफराद की जानें महफूज रहें। मामून अब्बासी ने अपना हकीकी चेहरा आयां कर दिया है। कोई भी काफिला दारुल हुकूमत नहीं पहुंच रहा। बहुत से मोमिनीन जो अली इब्ने मूसा से मुलाकात का इरादा रखते थे वो दारुल हुकूमत मर्व नहीं पहुंच पाए। हुकूमत के शदीद रद्द अमल के नतीजे में बहुत से हाशमियों ने जाम शहादत नोश किया और बाकियों की कोई खैर खबर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
3: ये एक और हुकूमती पैगाम आया है।

0: कि सफर अब मूसा इब्ने जाफर के फर्जंदान से क्या चाहता है हमजा? आखिर क्यों इस खानदान के नसीब में अपने वतन से दूरी लिखी है? वालिद गरीबुल वतन होकर बगदाद में शहीद हो गए, उनके फर्जंद को मर्व में रहने पर मजबूर किया गया। और फिर हुकूमती पैगामों का ये सिलसिला, इस बार क्या नया होने जा रहा है हमारे साथ?
1: आधी रात गुजर चुकी है, सर्दी भी मजीद बढ़ गई है।
2: मुझे तो इनकी खवातीन और बच्चों की फिक्र है, इनका मजीद यहाँ ठहरना बेहतर नहीं है।
1: मैं जाकर कहती हूँ।

0: बीबी जान, जानती हूँ कि अपने वालिद की कब्र से जुदा होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्दी की वजह से ज्यादा नहीं ठहर सकते हम यहाँ।
1: बीबी, बेहतर होगा आप कुछ देर आराम कर लें।

पहाड़ों और वादियों की शदीद सर्दी के जिससे हमारा पहली बार वास्ता पड़ा था हमारे लिए वबाले जान बन गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि हुकूमत के भेजे हुए मामूर अचानक गायब हो गए और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ये अजीब और गरीब इज़्तिराब और वहशत की कैफियत हड्डियों तक पहुँचने वाली सर्दी से ज़्यादा तकलीफ देती।

0: हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरा इश्तियाक उतना ही कम होता जा रहा है।
1: किस बात की परेशानी है तुम्हें? मैं साथ हूँ, तुम्हारा शौहर साथ है, और साथ में अरबी घोड़ों पर सवार बनू हाशिम के शमशीर जन है जिनका कोई मुकाबिल नहीं। घबराने की कोई बात नहीं बेटी।
0: मेरा दिल परेशान है, ये सफर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने तसव्वुर किया था। पहले मुझे ये लगता था कि आप मामून अब्बासी को बिला वजह ही चालाक हुक्मरान और उस हुकूमती दावतनामे को एक साजिश समझ रहे हैं। मैं समझती थी कि आप इस सफर की अहमियत से ठीक तरह वाकिफ नहीं हैं। आप जानते हैं ना कि मुझे मर्व के कुतुबखानों और तिब्ब तबाबत के मराकज़ जाने का कितना शौक था, और दारुल हुकूमत में उस इमारत को भी देखने का शौक था जिसे हमारी सुकूनत के लिए मखसूस किया गया है। और यहाँ क्या है? रेत पत्थर और आलूदा हवा के अलावा और तो कुछ भी नहीं है।
1: अच्छा, तो रेत और पत्थरों ने तुम्हें मायूस कर दिया। परेशान मत हो, पहुंच जाएंगे।
0: मैं ऐसा नहीं कह रही। देखें, यहाँ कोई भी खुश नहीं है। लगता है जैसे खुशियाँ हमारे लिए हैं ही नहीं। बीबी भी इस सफर से परेशान है। ये हुकूमती मामूर अचानक गायब हो जाते हैं और कोई भी कहीं से भी जाहिर हो जाता है। हमजा और इसहाक जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये वो सफर बिल्कुल नहीं है जो मैं समझ रही थी। बाबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। ये कैसी दावत है जिसके लिए हमें इतनी जहमतें और असियतें उठानी पड़ रही हैं?
1: अब अकल आई है तुम्हें? जब ये हकीकत तुम्हारे सामने वाजे हो ही गई है तो अब पहले से ज्यादा बीबी का ध्यान रखना। बीबी की हिफाजत अहम है। मैं नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी की खिदमत गुजारी के बाद अपने मौला रजा की अमानतदारी में किसी कोताही पर शर्मिंदगी उठाऊं।

0: क्यों, क्या हुआ? मुस्तकबिल की तबीबा का ज़ौक़ो शौक क्यों मान पड़ गया? आगाज़े सफर वाली खुशी कहाँ गई बेटी?
1: ये सफर अजीब है बाबा।

0: बाबा जान।
1: अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा जान। बीबी कह रही हैं कि हम यहाँ कयाम करेंगे। वो चाहती हैं कि यहाँ की खवातीन के लिए मजलिसे हदीस व नसीहत का इंतजाम किया जाए।
2: उनका हुक्म सर आंखों पर।
1: मैं बहुत परेशान हूँ। किसी की हिफाजत आसान काम नहीं, वो भी किसी ऐसी हस्ती की हिफाजत जो इस कदर अहम और महबूब हो, तो फिर इस इज़्तिराब और बेचैनी का होना फितरी अमल है। हमारा ये सफ़र तो अजीबोगरीब वाकयात से भरा हुआ है। सफ़र का तूलानी होना, दूरी और उदासी, कभी अपनों और कभी गैरों के साथ माशरत, ये सब जंगजू मर्दों के जिस्म रूह को भी थका देता है। मैं परेशान हूँ। मैं बीबी को ऐसी रंजीदा हालत में देखकर गमज़दा हूँ। एक अरसे से ज़मीन व आसमान मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सफ़र दुखों और तकलीफ़ों से भरा हुआ है।
3: कल की रात आपने कहाँ बसर की जनाब?
4: आपकी खातिर खुद को मैंने काफले से दूर रखना चाहा।
5: ये जो नामालूम लोग हमारे काफले के साथ साथ हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं?
4: नामालूम कौन है? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा।
3: अच्छा,
6: खुश आमदीद। कुछ दिनों से मैं बहुत बेसब्री से आप लोगों की मुंतजर हूँ। मेरी दावत कबूल करके मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शे। हलवा बना कर लाई हूँ मैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये बीबी की खिदमत में पेश कर दूँ।
4: मुंह मीठा कर लें जनाब इसहाक, बहुत खुलूस से बना कर लाई है।
3: अल्लाह आपका खुलूस कबूल करे। हमजा
5: जी भाई,
3: इन खातून को बीबी के पास ले जाएं।
5: ठीक है।
6: आपके आने की खुशी में मैं ये हलवा बनाकर लाई हूँ। आप कबूल कर लेंगी तो इज्जत अफजाई होगी मेरी। थोड़ा सा चख लीजिए।

0: क्या तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो नादान?
1: अस्मा, अस्मा, अस्मा!
2: क्या बात है हमजा? सब खैरियत तो है?
1: मैं नहीं जानता, लेकिन बेहतर है कि कोई उस हलवे को ना खाए।
3: क्या हुआ हमजा?
1: उस बूढ़ी औरत के बेटे को मामूर से सिक्के लेते देखा मैंने। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ है। मुझे शक हुआ तो इन्हें आकर मना किया।
0: तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को अपनी की गई गलतियों से सीखना चाहिए?
4: शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
3: मैं अब तुम्हारा मातहत नहीं हूं।
0: मामून अब्बासी की मकाराना चालों से मुझ जैसा तजर्बाकार और वफादार सिपाही भी महफूज नहीं था। मैंने उस शख्स के साथ अहदे वफा बांधा था जो दूसरों को क्या अपनों को भी माफ नहीं करता। एक मामूरियत के बाद दूसरी, और इसके बारे में मैं बस इतना जानता हूं कि यह अब्बासी हुकूमत के लिए मेरी जिंदगी की आखिरी मामूरियत होगी।
5: अगर कोई चाहता कि हमें किसी मुश्किल में डाले और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए तो वो क्या करता? वही जो मामून अब्बासी हमारे साथ कर रहा है।
3: मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के सिपाहियों में इतनी जुर्रत है कि वो वलीहद के ख़ानदान के काफ़िले पर हमला कर सकें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मामून अब्बासी की साजिशें बेनकाब हो जाएंगी, और उसने जो दोस्ती का ढोल पीटा है वो तबले जंग की सदा में तब्दील हो जाएगा। जैद, आप काफिले के पीछे कुछ फासले पर साथ आएं। कासिम, आप पहाड़ों और बुलंदियों पर नजर रखेंगे। हमजा, आप जाफर के साथ हमारे काफिले के आगे चलेंगे। अगर कोई मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन खबर करेंगे। मदीना से यहाँ तक नामालूम और मख्फी अफराद हमारे काफिले का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कभी पहाड़ों में, कभी नखलिस्तानों में, कभी मैदानों और बयाबानों में, लेकिन मुझे इससे बढ़कर हुकूमत की तरफ से इस साजिश का डर था कि कहीं वो किसी हादसे का सहारा ना ले, जैसे किसी पहाड़ से बड़े पत्थर का गिरना, खैमों में आग का लग जाना, या फर्जी राहजनों के जरिए हम पर हमला करवाना वगैरह, जिसके बाद हुकूमत खुद को इस सारे मामले से मुबर्रा करार दे।

0: ये जगह खतरे से खाली नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा।
1: दीदी बीमार हो गई है और मेरी किसी भी कोशिश से खातिर खा नतीजा हासिल नहीं हो रहा। शायद ये इसहाक इब्ने मूसा के तज़क्कुर की वजह से है। उन्होंने जब से कहा है कि वो खतरे को महसूस कर रहे हैं और हमें बीबी का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा।

0: तब से हर सदा पे मेरा दिल लरस उठता है।
1: हमजा लौट आया है।
2: दुनिया मेरी सोच और तवक्को से कहीं छोटी थी। पहले मैं सोचता था कि जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन मैं अब्बासियों के अलावा किसी और के लिए तलवार नहीं चला सकता। मगर यहाँ हमराही ये सफ़र की खजूरों की मिठास अपना काम कर गई और मैंने अब अपने ही सबका साथियों के हाथों जख्मी बदन के साथ अपने हम काफिला की जानों की हिफाजत की खातिर तलवार उठाई है।
3: ये आपके साथ क्या हुआ है?
4: मुझे माफ कीजिएगा जनाब इसाक, हक को पहचानने में देर हो गई, बहुत देर। आपकी और आपके लोगों की जानें महफूज नहीं है। वो किसी भी सूरत इस काफिले को सही सलामत मर्व नहीं पहुंचने देंगे।

0: मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। कासिम, जैद, इब्राहिम, आप लोग मेरे साथ चले। हमजा, आप बीवी और दीगर खवातीन को लेकर किसी पुरअमन इलाके की तरफ चले जाएं। याकूब, हमजा के साथ जाएं आप। जल्दी करें।
1: हमारा क्या होगा?
0: बेहतर होगा कि आप काफले से कुछ फासले पर रहें। आपकी हिफाजत के लिए हमजा साथ जाएगा आपके।
2: हमारे भाई और इमाम रिजा आपके मुंतजर हैं, उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। मैं आकबत खैर का मुंतजर था, मुझे जर्रा बराबर भी मौत का खौफ नहीं था। हम बनू हाशिम को दुनिया में शहादत से बढ़कर कुछ अजीज नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी अधूरी रह जाए। और लोग मेरे बारे में ये कहें कि इसहाक ने कहीं पर कोई कोताही की है, मेरे पास सबसे कीमती शय मेरी जान थी, जिसे मैं मैदान में ले आया हूं।

0: I just I can't keep up.
1: मैंने कहानियों में भी कभी इस तरह के रहस्यों के बारे में नहीं सुना था। उनमें हर कोई तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता जंगजू की तरह था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रहस्य हो ही ना। मुझे हर किसी पर शक हो रहा था, यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत पर भी जो इस दर्दनाक हमले से पहले हमारे लिए हलवा लेकर आई थी। मुझे ये भी डर था कि दुश्मन हमारी इन शहादतों के बाद भी अगर खामोश ना बैठा और उसने दोबारा किसी भी वक्त हम पर हमला कर दिया, नहीं मालूम कि हम मर्फ पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लगता है बाकी का सारा सफर इस तराब और बेयकीनी की कैफियत में गुजर जाएगा। बीबी पूछ रही है कि कुम तक कितना फासला है।
2: मेरे ख्याल में
3: तकरीबन 10 फरसख।
1: मैंने शहर कुम का नाम पहले से सुन रखा था। मेरी वालिदा ने इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद से रिवायत किया था कि कुम अहले बैत का हरम है। बीबी कह रहे हैं कि कुम तक 10 फरसख का फासला है। जैसे ही मैंने बीबी को कुम का फासला बताया, उन्होंने फौरन काफले से अलग होकर कुम की तरफ जाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद एक छोटे से काफले के बायस मेरे दिल को कुछ सुकून मिला।
4: मेरा सलाम हो अहले बैत इस्मत और तहारत पर। बहुत शर्मिंदा है बीबी। अल्लाह गवाह है कि हमने कहीं भी सुस्ती से काम नहीं लिया। हम लोगों को जैसे ही आपके काफले की खबर मिली, हम उसी वक्त रवाना हो गए। हमें अपने गम में शरीक समझे। मर्फ तक पहुंचने में बहुत दिन लग जाएंगे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप कुछ दिन कुम में हमारी मेजबानी कबूल फरमाएं।
1: फिर से इत्मीनान और इस्तराब यकजा हो गए। इत्मीनान इसलिए कि कुम का नाम सुनते ही बीबी के रंजीदा और गमजदा चेहरे पर इत्मीनान नजर आया, और इस्तराब इसलिए कि मालूम नहीं कुम पहुंचने तक हमारे साथ क्या होगा।
5: कुम वालों, बीबी का काफला पहुंच गया है। दुख्तर मूसा इब्ने जाफर का काफला पहुंच गया है। खुशामदीद, खुशामदीद मूसा इब्ने जाफर की दुख्तर, खुशामदीद। आपने कुम वालों को यह शर्फ बख्शा, आप पर हमारा सलाम।
6: हम सब आपका खैर मकदम करते हैं। मर्व में हमारे मौला रजा की खिदमत में पहुंचने तक काफी रास्ता बाकी है। आप सेहत याब होने तक यहीं कुम में कयाम फरमाइए और इस शहर वालों को अपनी खिदमत का मौका दीजिए।
7: मेरा सलाम कबूल कीजिए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। कुम के तमाम मर्द और खवातीन आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं और आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं।
1: इन दिनों कुम में ठहरने का इंतखाब बिल्कुल सही था। अपनी माँ की नसीहत और जनाब इसहाक शहीद की वसीयत के मुताबिक मैं खुद को बीबी के मुहाफ़िज के मुकाम पर देख रही थी। एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। बीबी हर हाल में, चाहे खलवत में हो या ख़वातीन से मुलाकात में मसरूफ़ हो, ज़िक्र इलाही को कभी फरामोश नहीं करती थी, और मेरी इबादत इन दिनों बीबी की आयादत करने में थी। दवा बनाना और बीबी की सेहत याबी के लिए अपनी पूरी कोशिश करना।
0: अस्मा, बीबी, देखो क्या हुआ है।
8: बीबी, क्या हुआ है आपको? तबीबा, तबीबा को फौरन बुलाइए। थोड़ा पानी दो मुझे।
0: तबीबा, या अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? जल्दी से देखिए ना आके।
8: पुरसुकून हो जाएं। मेहरबानी करके आप सब बाहर चली जाएं।
0: चलिए। या अल्लाह अपना करम करना।
2: ये लो बेटी, जो तुमने कहा था वो सब ले आई हूँ।

0: घबराई हुई क्यों हो तुम?
1: काम कर रही हूँ, घबराई हुई नहीं हूँ मैं।
0: काम कर रही हो इस तरह से?
1: क्या हो गया और कैसे होता है काम? मैं यहाँ अपने घर से मीलों दूर, शोहर शहीद हो गया परदेश में, और कैसे काम करूँ कि आप राजी हो जाएं, बताएं मुझे।
0: अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बेटी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि तबाबत सब्र तहम्मुल का काम है। इस परेशानी और अफसरदगी में तुम दवा तो बना सकती हो बेटी, लेकिन शिफा नहीं दे सकती। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए।

0: क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मौजजा करना चाहते थे, मदीना की बेहतरीन तबीबा के शिफा बख्श हाथ बनना चाहते थे, चाहते थे जख्मों और तकलीफों को कम करो, फिर तुम इतने नातवां क्यों हो गए? आखिर इस बीमारी का इलाज मुश्किल क्यों है? बेवकत हाथों, काश तुम ना होते, तुम्हारे होते हुए मैं कुछ ना कर पाऊँ, ये ज्यादा हसीयतनाक है मेरे लिए।
1: अगर आपके हाथ थक गए हैं तो मैं मदद कर दूँ आपकी?

बीमारी भी रहसनों से कम नहीं है। खामोशी से आगे बढ़ती है, फिर मुहासरा कर लेती है। जब ऐसा लगता है कि इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा तो सामने खड़ी नजर आती है। हम तबीबों से दवा और अल्लाह से शिफा तलब करते रहे, लेकिन बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी।

0: और उस दिन से अल्लाह की पनाह जब तबीब दवा और इलाज के बजाय नहीं जानते शायद या दुआ करें जैसे अल्फाज की तकरार करें।
1: मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, जितना इल्म तब मैंने सीखा है वो सब इस्तेमाल कर लिया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं जानता कि उनकी बीमारी की असल वजह मुझ पर जाहिर क्यों नहीं हो रही।

0: बीमारी का कोई तोड़ नहीं हो रहा मूसा।
1: तो इसके इलाज के लिए मजीद कोशिश करेंगे हम।
0: हर इलाज आजमा चुके हैं,

बीबी के सिरहाने कुरान पढ़ने वाली का इंतजाम कीजिए। तबीब ने जवाब दे दिया है, अब किसी के बस की बात नहीं है।

0: ऐ काश कि मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती कि मैं यहीं ठहर जाऊं और आपके फिराक में अश्क बहाऊं, या मदीने की तरफ लौट जाऊं और जहां कहीं भी मुमकिन हो आपके सफर की हकीकत को बयान करती रहूं, आपके पास ही ठहर जाऊं और अपनी माँ से जुदाई को बर्दाश्त करूं, या फिर अपनी माँ के पास चली जाऊं और आपसे दूरी का गम सहूं, यही कुंभ में आपके कब्र मुबारक की मुजावर बन जाऊं और आपके जायरीन की खिदमत करूं, या आपकी सफीर बनकर मदीना चली जाऊं। ऐ काश मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती।
1: ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इमाम अली इब्ने मूसा रिजा अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी साद अशरी को ज्यारतनामा हजरत बीबी फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा देकर कुमुल मुकद्दिसा भेजा और उस जमाने से लेकर कयामत तक आने वाले जायरीन के लिए उस ज्यारतनामे को वसीला मार्फते हजरत फातिमा मासूमा करार दिया।

देखो, अल्लाह का शुक्र है, दर्द तो नहीं हो रहा, प्यास तो नहीं लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।

0: मैंने मन्नत मांगी है जैसे ही आंख खोलोगी एक बकरा कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है?
1: सब खैरियत से तो है।
0: सब बच गए सिवाय एक के, जो अपनी लालच की वजह से मारा गया।
2: अल्लाहु अकबर,
3: अल्लाहु अकबर,
2: अल्लाहु अकबर,
3: अल्लाहु अकबर,
2: अल्लाहु अकबर,
0: अल्लाहु अकबर। कैसे हो बेटा? दर्द तो नहीं है ना?
4: जी नहीं।
2: अल्लाहु अकबर,
3: अल्लाहु अकबर,
2: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
3: अल्लाहु अकबर,
2: अल्लाहु अकबर।
0: खुदा रहमत करे।
2: हम सब लालच के गुलाम हैं, कोई बच्चों का, कोई सिक्कों का और कोई खूबसूरत बीवी का। अगर संदूक से दिल ना लगाया होता तो ये इंसान अब भी जिंदा होता। इसकी लालच इसे खा गई।
5: बेहतर है इसे बख्श दो। शुक्र करो कि बेटे का दाग नहीं देखना पड़ा।
2: अब हम हैं और ये बेसालार कारवां। हम सब में रास्ता आप ही जानते हैं। आपके साथ मुहाफिज भी हैं। अभी आप सब जितने दिन आराम फरमाना चाहते हैं फरमाइए, फिर हम साथ चलेंगे।
0: जैसे ही मेरी बीवी की तबीयत बेहतर हो जाए चल पड़ेंगे।
2: इंशाल्लाह।
0: इस तरह चलेंगे कि हज के मौसम में मक्का पहुंचे।
2: इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह। जनाजा जमीन पर ना रहे।
2: ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

0: इस तरह हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है।
1: आपने पहलवान का नाम नहीं बताया।
0: पहलवान?
2: ये खैर का पहलवान जिसका नाम बार बार लेते हो झूठ भी बोलता था क्या जनाबे वाला? अली ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरे दिल का खून कर देना।
0: ये लो, अपने बाबा के पास जाओ।
3: काफी है, आराम करो।
2: क्या तुम खुद नहीं कहते हो कि अली रसूल के कलाम को अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे? क्या झूठ बोलना गुनाह कबीरा नहीं है? हनीफ के बेटे फिर क्यों तुम्हारी जबान झूठ बोलती है?
4: बानो सुनिए, सब आप दोनों को देख रहे हैं।
2: मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अगर तुम्हारा ये बर्ताव और अखलाक उसके मकतब का नतीजा है तो अल्लाह का हजार शुक्र है कि मैं अलवी नहीं
4: हूं। अस्तग़फिरुल्लाह, शैतान बीच में आ गया है इसलिए इस तरह शोर शराबा कर रही हो।
5: आप दुल्हा दुल्हन है और हज के लिए जा रही है, जरा देखो तो किस तरह कांप रही है।
0: आप तशरीफ ले जाए, कोई सामान न रह जाए, कल निकलेंगे।
6: चलिए
5: चलिए यहाँ से,
4: चलिए चलिए चलते हैं।
5: चलिए,
2: मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, कल लौट जाऊंगी। हिलाल,
0: कमरे में बात करेंगे।

0: मैंने क्या किया है जो इस तरह सबके सामने झगड़ा कर रही थी? कोई बात कहनी है तो अकेले में कहो, मैंने कौन सा झूठ बोला है?
1: इश्क और मोहब्बत का ढोंग इसलिए किया ताकि वो खत सलामती के साथ पहुंचाओ। सही कह रही हूँ ना मैं? कितनी बेवकूफ हूँ मैं, कितनी पागल हूँ मैं। मैं समझ रही थी कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। मैं तुम्हारे हाथों की गुड़िया हूँ हिलाल। पाक और सफेद एहराम के नीचे कत्ल का सामान हज पर ले जा रहे हो। तुमने वो देखा कि खत वालों का क्या अंजाम होता है?
0: इतनी बेचैन मत हो, अभी तो तबीयत संभली है। जो कुछ कह रही हो वो तुम्हारा हक है। हम हज पे जा रहे थे और माँ अपनी शर्त कबूल किए बगैर हमें इजाजत नहीं दे रही थी। तुम्हें खत मिल गया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बताता हूं तुम इसी तरह बेचैन होती हो। कूफे के हालात तुमने खुद देखे, सिर्फ यही सफर तुम्हारी जान बचा सकता है।
1: हिफाजत और इस तरह? अगर जिंदान के दरवाजे पे शोर शराबा न होता तो तुम्हारा सब कुछ फाश हो जाता और खत उनके हाथ लग जाता। इतना भी ना सोचा कि कैसी मुसीबत हमारे इंतजार में है।
0: फिलहाल तो किसी परेशानी के बगैर दरवाजे से गुजर गए, अब किस चीज का गम है?
1: इस बात का गम है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं सोच रही थी कि तुमने मेरे साथ रहने के शौक में हज का फैसला किया है और तुम भी बाकी मर्दों जैसे खुदगर्ज, बेख्याल और बेगैरत हो।
0: बहुत बेइंसाफ हो, बहुत। कोई जानता हो या ना जानता हो, पर अल्लाह जानता है तुमसे मेरा इश्क सच्चा है। मैंने बताया था कि मैं मजबूर था। तुम जानती हो कि तुम्हें चाहता हूं, इसीलिए ऐसा कह रही हो।
1: बस करो हिलाल, पुरानी बातें ना दोहरा।
0: तुम दोनों ने मुझे सिलबट्टा में रखा है। हावन का पत्थर मां और हावन का दस्ता तुम, जो हर रोज मेरे सर पर मारती हो। याद रखो, जो खेल तुम दोनों ने शुरू किया है उसमें हारने वाला मैं हूं। या अल्लाह, तू देख रहा है ना, एक पुरसुकून सफर से भी मैं महरूम हूं। तुम्हें चाहने की हर रोज एक नई कीमत चुका रहा हूं। कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, मेरे इश्क पर शक न कर।

0: के लिए तैयार हैं।
1: अल्लाह आपकी हिफाजत करे।
0: अपना सामान उठा लिया है?
2: जी आपका जो
0: है। अहमद, किसी का सामान ना रह जाए, अगर मदद चाहिए तो उनकी मदद करो।
3: जी जरूर।
0: आइए मैं मदद करता हूँ। चलने के लिए तैयार हो जाओ।

0: ध्यान से सुनो, जैसा तुम देख रहे हो इस कपड़े में कोई बटन वगैरह नहीं है। अगर शरारत करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी।
1: हे अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। खाला हंसिए नहीं बल्कि दुआ कीजिए।
2: खुदाया हमारे हाजी की इज्जत रखना।
0: अपने बाबा के पास जाओ। माशाअल्लाह, खुदा कितना खुश होगा तुम जैसी मेहमान के लिए। मुझे माफ किया।
2: जब तुमने कहा मेरी मोहब्बत पर शक न करो और मेरे साथ रहो, अगर तुमने ये झूठ भी बोला है तो बहुत अच्छा झूठ था। वहीं तुम्हें माफ कर दिया।
0: खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआ कबूल हो गई। अपने कपड़े ठीक कर लो।

0: क्या किसी को ढूंढ रहे हो?
1: सुनो भाई, रसूले खुदा के नवासे कहाँ?
2: वो तो चले गए।
1: चले गए? कहाँ?
2: उनके मकसद का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 8 ज़िलहिज्जा का सूरज निकलने से पहले पूरे कारवां के साथ निकल गए।
1: तेजी के साथ जाऊं तो उन तक पहुंच जाऊं।
2: आप तो मुहर्रम हो गए हैं, कहाँ? आमाल खत्म होने तक आप कहीं नहीं जा सकते। दुआ की गुजारिश।
0: अब क्या करोगे?
1: अगर इमाम मिल गए तो ठीक, वरना

0: अमीर इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तुम्हें गिरफ्तार करके कूफा ले जाना है।
1: अगर तुम्हारा मकसद मैं हूं तो बताओ किसकी तरफ से आए हो? हिलाल, हिलाल।
2: शर्मसार हूं जनाब, शर्मसार हूं।
3: अगर तुम्हें मुझसे काम है तो इन्हें छोड़ दो।
1: इसे हाथ ना लगाना, छोड़ दो उसे, छोड़ दो।
3: इसे इल्तिजा ना करो।
1: इसने क्या किया है?
3: मेरी अमानत पहुंचा देना।
1: क्या किया है इसने? मुझे भी इसके साथ ले जाओ, मैं भी इसकी साथी हूँ, मुझे ले जाओ। हाथ खोलो मेरे, मेरे का हाथ खोलो। कारवा वालों से कहना कूफा की तरफ चल पड़ो, मेरे वालिद तक हिलाल की गिरफ्तारी की खबर पहुँचाओ। कहना नायला में बिच्छू की डसने की वजह से जल आने की ताकत ना थी, यहाँ तक के गनी साथ लेने की हिम्मत भी ना थी। जल्दी करो,

0: मेरे लौटने तक यहीं रहो, भूखे ना रहना। सलाम।
1: सलाम।
0: तुम्हें मालूम है कि उम्मे सलमा का घर कहाँ है?
1: मेरे साथ आइए।

0: यही है उम्मे सलमा का घर।
1: शुक्रिया
0: जी। या अल्लाह, सलामुन अलैकुम हिलाल की आंखों के नूर, हज कबूल हो बेटी।
1: सलाम, माफ कीजिएगा, सफर की थकावट और भूख की वजह से आपको सुबह देख ना पाई।
0: कोई बात नहीं बेटी, अच्छे दर पे आई हो। जैसे ही निवाला उनके हाथ से लोगी, तबीयत संभल जाएगी। अरीफा और मोमिना हैं, हर दर्द का चेहरा उनकी मुट्ठी में है।
1: खलल का बाइस तो नहीं हो?
0: आज तक इस घर का दरवाजा किसी पर बंद नहीं हुआ है। तशरीफ ले जाए। सुनो मेरी बेटी, परेशान न होना, जब तुम्हारी तबीयत संभल जाए तो खुद अपनी आंखों से देखोगी कि किस तरह अल्लाह अपने खुदाई अख्तियारात से हर चीज पर नजर रखता है। तुम सिर्फ अपना और हिलाल की अमानत का ख्याल रखो और किसी की फिक्र ना करो। फी अमान अल्लाह।

0: बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पर चमक लौट आई है। जब सूप का प्याला खत्म करोगी तो नूरुन अला नूर हो जाएगा।
1: अगर हिलाल से वादा ना किया होता तो आपकी जहमत का बाइस ना बनती।
0: मेरी बेटी कौन सी जहमत, काश आसमान से कोई फरिश्ता आता और वो बताता कि मैंने कौन सी नेकी की है कि आज मेरी तकदीर ये थी कि तुम जैसी परी सूरत से मुलाकात करूं। बहुत खुश नसीब है ये उम्मे सलमा।
2: खिदमत में हाजिर हुई हूँ ताकि अगर कोई काम है तो मैं बजा लाऊं।
0: नहीं नहीं, कैसा काम, मैंने देखा कि तुम्हारा बेटा भूखा सो गया है। सूप तो हर किसी के लिए बना है, खुद खाओ, बच्चे को भी खिलाओ, उसके बाद चली जाना, समझ गई?
2: जी अच्छा,
0: खुदा हाफिज़।

0: मेरे हिलाल को गिरफ्तार करके कूफा ले गए हैं। उस पर यह खत पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मैं उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। करार यह था कि यह खत हुसैन इब्ने अली के हाथ में पहुंचे, जो ना हो सका।
1: अल्लाह कबूल करे। तुम समझो कि उनके हाथ पहुंच चुका है।
0: इमाम के शियों के लिए मुबारक हो। मेरा नाम तो इस खत में नहीं, इतना भी नहीं जानती हूँ कि यहाँ क्या कर रही हूँ।
1: तुमने अपनी जान खतरे में डाली और किसी भी वजह से सख्ती बर्दाश्त की तुमने। जिस हुसैन को मैं जानती हूँ, किसी भी शख्स का एहसान बाकी नहीं रखते वो।
0: मैंने आपको परेशान कर दिया क्या? मैंने कोई गलत बात कर दी?
1: नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ।

0: नबी का लाखते जिगर बयाबानों में और मैं घर में अमन व अमान में।
1: परेशान ना हो, कूफियों के मेहमान हैं और वहां भी उनके सीना से पर कम नहीं है।
0: इस सफर का कोई मकसद और मंजिल नहीं, इसकी मंजिल कयामत खेज है। सुना है कि इमामत की रिदा अमानत छोड़ कर गए हैं।
1: अच्छा, इसका क्या मतलब?
0: यानी उनकी माँ फातिमा मर्जिया अज़ा का लिबास पहनकर हौज़े कौसर पर उनके इंतजार में

अगरचे तुम्हारी आंखों में नाराजगी दिखी, लेकिन इन हाथों पर फिदा जो मेरे बेटे हुसैन का खत मेरे लिए लाए हैं। बेटी तुम खुश नसीब हो, खुशबख्त हो, तुम्हें तुम्हारा दिल यहां लाया। यानी कि इससे पहले तुमने अपने जमीर को गुनाह से आलूदा नहीं किया है, इसके बाद भी अपने दिल की आवाज सुनना। उस हां की तरह जो तुम्हारे दिल से निकली और हिलाल की किस्मत बनी।

0: एक हफ्ते से हम यहाँ शहर के दरवाजे के पास इंतजार में हैं। चींटियों और टिड्डियों ने सारा सामान बर्बाद कर दिया है। जो कुछ बचा है उसे सूरज ने जला दिया है।
1: पहले ही दिन से बता दिया गया था, आप लोग आने की इजाजत रखते हैं, बाहर जाने की नहीं। अगर जा सकते हो तो बिस्मिल्लाह।
0: कहाँ जाऊँ मोमिन, मेरे बीवी बच्चे यहाँ नहीं है, कहाँ रहूँ और कब तक? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ।
2: अगर वापस ना जाऊँ तो मेरे जानवर मर जाएंगे, और अगर यहीं रहूं तो वापसी का रास्ता नहीं है। मरजाना के बेटे, खुदा तुम्हारा बुरा करे, नहीं मालूम सुलह के लिए आए हो या जंग के लिए।
1: ए कमीने, क्या कहा? बेएहतरामी करते हो? हमेशा मेरे अमीर का नाम अदब और एहतराम से जुबान पर लाओ। अपनी औकात में रहो। तुमने गुस्ताखी की है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। पकड़ो उसे।
2: क्या कहा मैंने कोई तौहीन नहीं की है।
1: ले जाओ और अमीर की तौहीन करने के जुर्म में सजा दो, और इसके जानवर ज़बह करके पूरे कूफा में तकसीम करो, ताकि ये दूसरों के लिए बाइसे इबरत बने।
2: ए लोगों, मेरी मदद करो, मैंने कुछ नहीं किया है। किनारे हटिए,
3: कोई तो मेरी मदद करो।
2: किनारे हटिए।
4: इतनी अफरातफरी किस ने किया? कौन आ रहा है जो कयामत?
5: सच क्या है और झूठ क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी हुकूमत का अंदाज नौमान की तरह नहीं है। बहुत सख्ती के साथ हर चीज पर कड़ी नजर रखे हैं।
6: रो नहीं, सर ना पीटो। अब जबकि मीसम की बातें सच साबित हुई हैं, लिखो जो कुछ मैं कहता हूँ कि तुम लोग हमेशा भूलने वाले रहे हो। तुम कहाँ थे रोज़े गदीर जब साहिब उम्मत ने तुम्हारे दीन को कामिल किया, जिस वक्त अली का हाथ ऊपर उठाया और फरमाया मेरे बाद अली तुम्हारा मौला है, और फिर फरमाया जो कोई अली को दोस्त रखे अल्लाह का दोस्त है, और जो कोई अली से दुश्मनी करे अल्लाह का दुश्मन है। गदीर को तुमने भुला दिया है और रसूल के कलाम को पामाल कर दिया। मेरी बातों को तुम कभी भूलना मत, कभी न भूलना। मैं फिर से कहता हूँ कि तुम लोग हमेशा भूलने वाले ही रहे हो, लेकिन अब खुदा के वास्ते ये गलती कभी न करना। मस्जिदे कूफा का मस्जिदे कूफा का मेहराब अली के खून से खिजाब हो गया, खून अली से खिजाब हो गया। और जहरा का घर लुट गया।
1: अमीर अब्दुल्ला बिन जियाद के हुक्म पर इस झूठे की जबान हलक से बाहर निकाल लूंगा, इसके हाथ पांव काटूंगा, और इस कतर इस दरख्त पर लटका रहेगा कि इसका जिस्म परिंदों की खुराक बन जाए।
7: अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, तुम्हारे अहमक दुश्मन तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे।
6: मेरी जबान काटो, खाक हो इस जबान पर के मुंह में हो और अली का जिक्र ना करे। मेरा गोश्त और हड्डियाँ अगर परिंदों की खुराक बन गई, तो इस तरह हर परिंदे की गिज़ा अली का नाम होगा, जो मीसम के जुनून से उनके खून में जोश भरेगा। अशहदु अल
1: मतलब उनका दाया हाथ और बाया पांव काट दो।
8: अल्लाह की कसम, शब रोज यही कहा करता था, जुबान काट कर खजूर पर लटकाएंगे।
7: या का ना बदु वाह, या का नस्ताई।
5: सलाम।
7: मेरे वालिद कहाँ हैं?
3: خیریت سے پہنچ گئے، زیارت قبول انشاءاللہ.
9: جتنا سستا اور خراب مال ہو آدھی قیمت پر دروازہ شہر کے پیچھے خریدو اور گودام میں جمع کرو. ایک سکہ بھی زیادہ نہ دینا کہ وہ بیچنے پر مجبور ہے. دروازہ بند کرو بدبخت، دروازہ بند کرو، بند کرو.
7: سمجھ لیجئے کہ اس کی دشمنی کی مجھے توقع تھی، لیکن اتنی جلدی اور مکہ میں نہیں.
9: جلدی سے بند کرو.
7: اس بزدل دوست کے پاس نہ صرف دین نہیں بلکہ اسے عزت و آبرو کی بھی سمجھ نہیں.
9: بڑھ ڈالو، گھر تک کوئی بات نہ کرنا، میرے ساتھ آؤ.

0: कोई बच्चा पैदाइश के वक्त बदबख्त नहीं होता, हम खुद ही अपनी किस्मत और इकबाल को लात मारते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस रोज से तुमने मेरी बहन से शादी की है, बदबख्ती की मोहर तुम्हारी पेशानी पर लग गई है। तुमने लालच की, लालच।
1: भले 100 दिन तक मेरे कान में तुम यही कहते रहो, मेरी बात वही है जो मैं कह चुका हूं। कोई खत नहीं था मेरे पास।
0: अच्छा, बहुत चालाक हो। अम्बियों से लड़की लेकर उनके माल और दौलत से अपनी हैसियत बनाई, फिर हुसैन बिन अली के लिए खत लिखा, आइए और हुकूमत कीजिए, गदा समझाए।
1: पहले बासित और अब मैं, तुम्हें बहाने की तलाश है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, सही कहा ना?
0: सबूत? क्या हमें मालूम नहीं कि तुम हुसैन बिन अली के लिए खत लेकर जा रहे थे? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे दिन रात औहद की बेटी के साथ अमान व अमान में खुश रहे?
1: इंसान की तरह बात करो तो समझ आए।
0: तुम सच में गधे हो, तुम सच में गधे हो।
1: अपनी बिरादरी साबित करने के लिए मैंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ कर चुका हूं तुम्हारे।

0: रहने पर।
1: अभी एक काम बाकी है, तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए इब्ने ज़ियाद को मनाने में मेरी खाल उधड़ गई, लेकिन अमीर ने एक छोटी सी शर्त रखी है, तुम्हें लश्करे हुसैन के खिलाफ फौज का कमांडर बनना है, समझे?
0: नामुमकिन है।
1: मत डरो, हुसैन के पास 300 साथी भी नहीं है, उसकी शिकस्त यकीनी है।
0: तुझ पर तेरे बाप और इब्ने ज़ियाद के बाप तीनों पर लानत है, जाके कह देना हिलाल ने कहा है मैं अपने इमाम से मुकाबला नहीं करूंगा, मेरा सर काट दो, बात खत्म।
1: कान खोल कर सुनो, हुकूमत के कायम के लिए हम अपनी खवातीन का गला भी काट सकते हैं, हुसैन इब्ने अली क्या चीज है?
0: बेग़ैरत

0: अजब आग है।
1: जहन्नुम में खुश आमदीद अबू नईम।
2: हाँ सब पहुँच गए, जल्दी करो जल्दी करो।
3: नई खबर क्या लाई हो अकीला?
2: मेरा हिलाल कहाँ है?
3: जिंदा नहीं इब्ने ज़ियाद।
2: अगर हसब और नसब का किस्सा है, सामिया की निस्बत मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ।
3: इस तिफल की गर्दन पर तुम्हारा हक है और तुम इसके बाप हो।
4: निसम की जनाजे को चुराने वाले का नाम बताऊंगा।
3: सामिया को मेरे हवाले कर दो, उससे हिसाब चुकता करना है।
2: मुखे वालों की बातों को सुनो लेकिन यकीन हर किस मत करना।
5: उसकी कब्र कहाँ तलाश कर रहे हो? उसकी कब्र यही है।
6: नईम, इस आदमी ने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया है।